ठीक शुक्र ओके जी उस पता से कार गुम चिदो वांडी वाला आओ द टांग वाला ता सुधवाना लक्षण रा पासे खा आओ कना बस डीर खूबन मोकरल नूर खूबन चिकम दे मक बिल्कुल रागले दे हसामलु दि सांसु दे पारा ओम सासु कशर दे ओम सा सुरूर दे ओ द चान ब मुशीरी द चान ब किशरी द चा ब हमजूली नु बिल्कुल दा सिकार बकुम चि प्रोग्राम ब मक पे उड़ान दे बानी बोसु स्तासु कॉल्स ब हम जान से रखलु अस्तासु मैसेज ब हम जान से शामिल हो आओ नंदर नसंगा इनन यो पुख्तन रौलमा आसिनन यो पुख्तन रौलम करानोलमा तासु चवाए आगे मैसेज जुन जर जरू कई फिर जिस दर स्तासु मैसेज जुन राले नुबिया तासु ने यो पुख्तन यो सवाल रौलमा आओ अगर दासे सवाल लेगा ना दासे सवाल ले चाह हर सड़े ठीक कवले शी मतलब जब हुए मैं चिदा से सोक बनी हुई चिया गई निश्चित ठीक कवले कद चार द स्कूल गेट नो वीली दले का ना लेकिन द स्कूल अगर खख्ते हम नहीं ली दली नो अगर हम ठीक कवले शी

0: ओके जी रसूल बादशाह आप आवाज सुंदर और हृदय जिबल कलर ते रसूल अस्सलाम वालेकुम शेह जी कुर्बान सु खबर के वेरो सर अधिकम जो है ना
1: अब्दुर्रहमान
0: और फबाद बठेरी ने जी खरकले स्टडी में शिदी थी आयो
1: मन ना
0: खुशाल शे अब्दुर्रहमान भाई दर तो वे दचा संदर है और दल घोड़े
1: संदर हो शपरो को लदा मखनई संदर दा वाच उफ लमाय वाड़ा वा खंजर खंजर बाड़न लारे का सुदा सुदो
0: उफ लमाय वाड़ा वा हाँ
1: मनना
0: खुशाल शे कदरमन शी डी रजू तो मनना दि प्रोग्राम की द काल कोलो शिरकत कोलो से ملگری ڈالے

अच्छा बोलो अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। एक शेर है नो टेंशन के लिए, द कंपनी जमा खोक भाई नजमान दो, द शेर मनल खान दो, नो टेंशन ले जरो तब में पैगाम दो, चे नो टेंशन यूज कवे चे मो टेंशन खत्म छी ना दाव दे टोल मुअनस शेर लिख ले दा खंच देर मन ना मनल जमा गोरे द कंपनी द नजमान खान दो नजमान दो देर हडे ना मन ना सी रशीद मनन खान दो वाह शेर शो चुप दीवाल से और खत्म नु वापस बरा खोदम दीवाल से और खत्म नु वापस बरा खोदम जका चे पलस्तर नु पिकड़ियो नु खो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी आओ तरह जगह शरंग।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 DI Khan, Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Tang. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेस्ट पाकिस्तान की आवाज, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है खूबसूरती की। जनाब, दोपहर के 4 बज चुके हैं और आज है 18 जुलाई 2026 सैटरडे, हफ्ते का दिन। अमेरिकराम, कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, अफियत के साथ होंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर, मौसम की सूरत हाल जो है वो अचानक से फिर से बिगड़ गई है। हम बहुत ज्यादा खुश थे कि जनाब इस दफा इस सीजन में जून तक जो है हमने बहुत ही अच्छा सा मौसम देखा, और 20-25 जून हो गया था लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल भी जबरदस्त किस्म का जा रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से टेम्परेचर बढ़ाया जनाब, और ऐसी गर्मी, ऐसी शदीद गर्मी कि जनाब अब जो है गर्मी ने सभी को नाकों चने जो है चबवा दिए हैं, और टेम्परेचर कल परसों से बहुत ही ज्यादा है। डेर इस्माइल खान समेत पहाड़पुर और टांक में भी यही सूरत हाल है, और तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए जनाब। हीट स्ट्रोक का खतरा इन दिनों में बहुत हद तक बढ़ जाता है, और हीट स्ट्रोक का शिकार अब तब होते हैं जब आपका टेम्परेचर, यानी कि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 46, 47, 48, 49 तक चल रहा होगा, लेकिन अगर आपका जिस्म का टेम्परेचर अगर 40 क्रॉस कर जाता है, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जिस्म भी इतना ही गर्म हो जाता है जितना कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, तो उसके बाद आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक की बहुत सारी अलामत होती हैं, आपके दिल का मतलाना, दिल का खराब होना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का एकदम से जनाब जो है शूट कर जाना, या फिर फालिज के अटैक भी हो सकता है इस औकात में। तो कोशिश करें गर्मी से दूर रहें जितना हो सकता है, घर से बाहर ना निकलें दिन 11 बजे से लेकर जनाब 11 बजे तक सारे काम सिमेट कर घर पहुंचे, फिर शाम को 5-6 बजे के बाद ही घर से निकलें, क्योंकि जनाब इसमें इस गर्मी की सूरत हाल में हीट स्ट्रोक से आप अपना बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं, और इस गर्मी की वजह से बहुत सारी आप अपना सेहत का नुकसान कर सकते हैं, तो बचाव ही सबसे बेहतर इलाज होता है। लेकिन मौसम की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये सख्त किस्म का जो टेम्परेचर है आज का दिन, यानी कि इतवार का दिन, सॉरी हफ्ते का दिन और इतवार का दिन, ठीक है जनाब, और सोमवार का दिन, ये तीन दिन मजीद अभी गर्मी रहनी है जनाब, ठीक है जनाब, और उसके बाद जो है बुध से मौसम जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा, यानी कि यही टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आएगा। जुमेरात को आपको अच्छी खासा मौसम ठंडा मिलेगा, तकरीबन जो है टेम्परेचर कहा जा रहा है कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि आज 44 है तो 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होगी, और जुमेरात से जो है गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का इम्कान है, और टेम्परेचर नेक्स्ट वीकेंड को बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगले जो दो तीन दिन है, स्पेशली आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, मंगल से टेम्परेचर जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, मंगल वाले दिन से, ठीक है जनाब। लेकिन कल का दिन और

परसों का दिन अभी है, आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। और जिनके घरों के अंदर एसी नहीं है, कूलर नहीं है और लाइट भी नहीं होती है, तो सर्दी गर्मियों के अंदर जो है अपने जिस्म को ठंडा रखने का जो तरीकाकार है वो देसी भी तरीकाकार है, उन्हें आप अपना सकते हैं। एक तो नलके के पानी से बार बार नहाएं, अपने जिस्म को ठंडा रखने की कोशिश करें, और ठंडे कपड़े को कपड़े को गीला करके भी रखें, आप इस सख्त गर्मी और टेम्परेचर से जो है अपनी जान को बचा सकते हैं, हीट स्ट्रोक के नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन जो याद रखिए कि मंगल से टेम्परेचर अच्छा होने, और फिर बुध और जुमेरात से बारिशों का एक सिलसिला है, आंधी और ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू होगा। सो इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अख्तिताम के ऊपर एक अच्छा मौसम जो अभी 44 42 में चल रहा है, 30 के ऊपर थोड़ा सा 31 32 में आपको मिलेगा।

केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन। अच्छा जी, मेरी आवाज इस वक्त डेर असमिल खान पहाड़पुर और टांग के इलाकों में आप भैया का वक्त सुन रहे हैं बराह रास्त। दो इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर पानी का इशू है, ठीक है जनाब। एक जो है टांग में तो बहुत ज्यादा पानी का इशू है, वहां पर तो पानी दूर दराज से भर के लाते हैं, और मेरे ख्याल में कि पीने का पानी भी कुछ अर्सा पहले जब हम मेडिसिन कंपनी में होते थे तो हमें पीने का पानी दस्तियाब नहीं होता था, मिनरल वाटर हम लेते थे, यानी कि अगर किसी के पास पड़ा होता था तो बड़ा खारा पानी होता था किसी दुकानदार के पास, तो पीने के बाद पेट खराब हो जाता था। अब उसी खारे पानी को या नमक वाले पानी को या हार्ड पानी को जब आप बालों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वह बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है उससे, ठीक है। तो वो बालों को मजीद खराब करने वाला ये जो है ऑयल होता है, ये जो है पानी होता है। केसन नेचुरल पाकिस्तान की ये जो प्रोडक्ट है केसन शैम्पू, इसके अंदर हमने एक बहुत ही सीक्रेट फार्मूला ऐड किया है, एक इंग्रेडिएंट है, एक यूं समझ लीजिएगा एक बहुत ही फायदा देने वाला इंग्रेडिएंट है जब हम इस शैम्पू के अंदर उसको ऐड करते हैं। और अगर कोई बंदा अपने बालों को, पहले तो हम कहते हैं कि अच्छे बालों के लिए हमेशा अच्छे पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है जनाब। अगर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है जनाब, आपके यहाँ पानी ठीक नहीं होता है, कोशिश तो करें कि फिल्टर के पानी के साथ अपने बालों को धोएं, ठीक है जनाब। क्योंकि नल का पानी जो होता है वो भी बाजू का जो है आजकल, जैसे कि डेर असमिल खान का नलके का पानी पीने के काबिल नहीं होता, पीने के काबिल जब नहीं होता तो वो नहाने के काबिल, बालों को भी धोने के काबिल नहीं होता है। यही वजह है कि खराब पानी से जब आप बालों को धोते हैं तो बाल आपके सेहतमंद नहीं होते हैं, आपके बाल खराब होते जाते हैं। तो क्या किया है हमने, इस शैम्पू के अंदर एक खास किस्म का इंग्रेडिएंट शामिल है। अगर आपको कभी ऐसा पानी, यानी कि बगैर फिल्टर वाले पानी से या साफ पानी से आपने बाल नहीं धोए, किसी खारे पानी से हार्ड पानी से आपने अपने बाल धो लिए, तो वो इंग्रेडिएंट उस असर को, खारे पानी के असर को, खराब पानी के असर को, हार्ड पानी के असर को खत्म कर देता है, ठीक है जनाब। अगर आपको ये बात थोड़ी सी डाउटफुल लगे कि यार अच्छा ऐसा भी होता है, आप हमारे शैम्पू को लैब कराएं, ठीक है जनाब। लैब करने के बाद आपको लैब टेक्नीशियन भी बोलेगा कि वाकई भी इसके अंदर एक खास किस्म का फार्मूला ऐड है जो पानी के, खराब पानी के असर को जायल करता है, ठीक है जनाब। अगर आप खराब, पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि बालों को, अगर आपने बालों से रिजल्ट, शैम्पू से रिजल्ट लेना है तो हमेशा जो है न्यूट्रलाइज्ड वाटर से, आरओ वाटर से पानी इसे अपने सर को धोएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आखिरी दफा जब आप पानी डालें ना जा खत्म करने के बाद, तो आखिरी दफा आधी बाल्टी, ठीक है जनाब, पानी की वो आपकी आरओ फिल्टर पानी की जरूर होनी चाहिए, ताकि आपके बालों के ऊपर जो आर्सेनिक ज्यादा वाटर है, जिस जैसे कि उसके अंदर नमकियात हैं या कुछ और केमिकल हैं, वो आपके बालों के ऊपर ठहर जाते हैं और आपके बालों खराब कर देते हैं। लेकिन आखिरी दफा धोने में जब आप फिल्टर का पानी इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल जो है वो उस पानी से असर नहीं पकड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हम आपको गारंटी देते हैं, जैसे कि टांग का स्पेशली इलाका है, टांग का इलाका है जहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा इशू है, प्रायोरिटी पर मैं आप लोगों को कहूंगा, पिछले हफ्ते जो हमें टांग से जो ऑर्डर वगैरह रिसीव हुआ उसमें बहुत सारे ऑर्डर शैम्पू के थे, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने हमारी इस बात को पिक कर लिया है और लोगों ने अपने खराब पानी के साथ हमारे शैम्पू को इस्तेमाल किया है और उनको बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। तो जनाब बाज़ुकात जो है खराब पानी झाग नहीं बनाता है, आप खराब पानी के साथ आप केसन शैम्पू को इस्तेमाल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई ये कंपनी पूरा क्यों नहीं कर पा रही है, इसके रिजल्ट इतने औसम हैं, इसके रिजल्ट इतने प्यारे हैं, ये बालों को इतना प्यारा बनाता है, ना सिर्फ ये खुश्की को खत्म करता है बल्कि जब लॉन्ग टर्म में आप इसे यूज करेंगे, एटलीस्ट जब 3 से 4 माह आप इसे इस्तेमाल कर चुके होंगे, तो आपको ये, आपको आपके बालों का घनापन इसी शैम्पू की वजह से ही

जी जनाब, केसन शैम्पू के साथ हम केसन जोड़ी बोलते हैं इसको जनाब, केसन ऑयल और केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू, इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके बाल जो है खराब शैम्पू इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, आपने बहुत बार आपने अपने बालों को कलर किया है, या आप अपने बालों को बहुत ज्यादा हेयर स्ट्रेटनर का यूज करती हैं, ठीक है जनाब, तो अपने बालों को नुकसान तो इन चीजों से पहुंचता है आप लोगों को। जब आप हीट हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं, आप केमिकल से भरे हुए कलर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इफेक्ट आता है, आपके बाल मुर्दा होने लगते हैं, उनके अंदर जान नहीं रहती है। और केसन हेयर ऑयल के हवाले से हम आपको कहते हैं कि केसन हेयर ऑयल जो है आपके बालों के अंदर जान डालने वाला जो है ऑयल है, और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो वाजे तौर पर आपको महसूस होगा कि जनाब कोई चीज़ आपने इस्तेमाल की। और हम कहते हैं कि केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू का जो रिज़ल्ट है ना, उसके लिए आपको महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, आप एक ही दिन लगाएंगे, यानी कि 7-8 घंटे के लिए केसन हेयर ऑयल को अपने सर के ऊपर लगाइए और उसके बाद केसन शैम्पू से धो लीजिए और फिर हमें बताइए, शो के अंदर कॉल कीजिए कि क्या वाकई एक ही दफ़ा धोने से केसन ऑयल ने आपके बालों में

सोचना, आप अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, सियाह बनाने के लिए, अपने बालों को लंबा और घना और स्ट्रेट बनाने के लिए हेयर केयर ट्रीटमेंट में केसन के ये दो प्रोडक्ट, केसन हेयर ऑयल और शैम्पू का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने बालों के अंदर जान जाते हुए महसूस कीजिएगा।

0: जी जनाब, केसन हेयर ऑयल जो है वो केसन कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट है। ठीक है जनाब, ऐसा नहीं है कि हमने यकदम से इतने सारे प्रोडक्ट बनाए थे, बल्कि इस कंपनी ने जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया वो ऑयल था, हेयर ऑयल। और हेयर ऑयल बनाने के बाद ही जनाब आप लोगों ने इतने फायदे हासिल किए हमारे इस हेयर ऑयल से। इतनी लड़कियों के बाल जो शॉर्ट शॉर्ट बाल थे, जिनके गर्दन से नीचे नहीं जाते थे, या जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट टूट फूट का शिकार होते थे, या जिनके बाल दो मुए हो जाते थे, उन लोगों को इस तरह ज़बरदस्त रिजल्ट मिले इस ऑयल से कि आप लोगों ने ही इसरार किया कि अब हमें केसन के प्लेटफॉर्म से, केसन कंपनी से ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए। यानी कि आप लोगों ने कहा कि हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अब केसन का शैम्पू होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम शैम्पू लेकर आ गए। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो फिर आप लोगों ने कहा कि भाई हमें तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं केसन से, क्या इसके और प्रोडक्ट आ सकते हैं, क्या इसकी क्रीम, ठीक है जनाब, क्रीम आ सकती है, तो हम क्रीम लेके आ गए। फिर आपने कहा कि क्या इसके साबुन क्यों नहीं है, इसके साबुन भी आने चाहिए, तो फिर हम साबुन लेके आ गए। फिर आपने कहा कि फेस वॉश इस कंपनी के क्यों नहीं है, जब इतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि केसन ने सिर्फ केसन हेयर ऑयल बनाया था। केसन कंपनी की जो पहली सोच थी, जिसके ऊपर ये कंपनी खड़ी हुई, जिससे कंपनी ये स्टार्ट हुई, जिससे हमने सफर शुरू किया था, वो केसन हेयर ऑयल था। और बाकी जो के जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए, जैसे कि शैम्पू आया, उसके बाद साबुन आया, उसके बाद फेस वॉश आए, उसके बाद जो है क्रीम्स आई, ग्लूटा रेंज आई, फिर उसके बाद ब्यूटी स्प्रे आया, फिर परफ्यूम्स आए, फिर पेन किलर, फिर इस तरीके से और चीज़ें, जैसे कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमने हेल्थ की प्रोडक्ट लॉन्च कर ली हैं, जैसे कि हमने आपको वेट कम करने वाली थक्की बना कर दिए, तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई वजन ज्यादा करने वाली चीज केसन की कब आएगी। ये आप कब कहते हैं, ऐसी डिमांड कब पैदा होती है? ऐसी डिमांड तब पैदा होती है जब कोई आपको रिजल्ट इतने जबरदस्त कोई चीज देती है कि आपका दिल करता है कि भाई ये वाली चीज भी इसी कंपनी की होनी चाहिए, ये वाली चीज भी इसी कंपनी की होनी चाहिए, कि ये पहली प्रोडक्ट इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह आप लोग जो बार बार हमें कह रहे हैं कि भाई कमजोरी खत्म करने वाली प्रोडक्ट और जिस्म को भरने वाली प्रोडक्ट भी आनी चाहिए केसन के वेट लॉस की तरह, जिस तरह हमने बनाए, तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि इसी महीने के अंदर, अगरचे अभी 12 दिन रहते हैं अगस्त के स्टार्ट होने से, तो अगस्त से पहले ही इंशाल्लाह कोशिश तो होगी कि अगले 5-6 दिन के अंदर, ठीक है जनाब, अगर 5-6 दिन के अंदर नहीं तो मैक्सिमम यही 10-12 दिन लगेंगे कि आपको वेट गेन फार्मूला भी केसन के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह अवेलेबल होगा।
1: रोजाना 4 से 5 बराहे रास्त स्टे विद अस।

0: कंट्रोल सिरप।
1: जी जनाब, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप। और एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। हां सुना खलील भाई।
1: जनाब क्या हाल है? अगर मैं अंदाजा लाऊं तो ईसब खान।
2: जी हां।
1: क्यों हाल है? सही ठीक ठाक है भाई। तो आवाज को पहचान गया? मैं तुम्हारी आवाज को पहचान गया। नंबर में याद को नहीं, लेकिन आवाज को लोग पहचान। हाँ बिल्कुल, जेरी आवाज रोजाना सबको अपनी तुसा सुने सो जरूरी गाल है बात। ठीक ठाक सही। गर्मी टांकी जी गर्मी चंगी हो सी? मैं क्या
2: टांकी तो मुल्तान का ज्यादा लगी पड़ी गर्मी
1: है ना। टांक दे विच हमेशा पता नहीं तुम्हारी साइड सूरज के नजदीक थी वेंदी है। हां जी के चक्कर तुम्हारे पास गर्मी बहुत ज्यादा आंदी है? पानी का मसला हाल तक भी है टांग दे विच या मसला हल ठीक है? हुन घर घर पानी फिल्टर वाला अवेलेबल होंदा है या हाल तक भी मसले इन टांग विच?
2: मैं उन मसला सारे पास पानी बहुत के जंग वदे बोर निकल ला दिया ले।
1: अच्छा जी।
2: हां पानी सारा कीमती पानी पी गया है। हो बार लो कर टांग दे शहर उन दो बात करे उत रोंद पानी है जाम वाला।
1: हां हां मसला को नहीं वाला को खराब नहीं कर सकता सही पानी तुम्हारे को
2: फिलहाल एक जो पता कर मैं कर तू तेल दादा ले लेती है वाला जला चला यार।
1: जी बिल्कुल, वाला वाला सारा अलग तेल है ते जरा दर्द वाला तेल है वो अलग तेल है। ठीक है जनाब, कोई भी तेल सारा पीवन वाला को नहीं। पहले की जहन एक गाल रखो सर, कोई भी सारा कोई ऐसा तेल को नहीं जरा तुसा पीवन है, बल्कि सारे दे सारे तेल जितने हैं वो लावण वाले, चाहे वाला वाला है चाहे दर्द वाला है, वो मुतासर हिस्से ते लैसो, कोई पीवन वाला तेल सारा कोई को नहीं। ठीक है सही।
2: ये पता करना मैं कर दर्द दर्द मैं मंगवाया गिरा को रकम दी थी मैं तो अच्छे यहां ने बदला रहा हूं।
1: ठीक है अलग अलग अलग अलग तेल इन पे। ठीक है सही।
2: ठीक है
1: सारे को ईसब खान भी सलाम। ठीक है बिल्कुल क्लियर। बताते चले आपको कि केसन एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन बनाने वाली कंपनी है और हमने हर मर्ज के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है जनाब, मैदे के लिए सिरप है आप लोगों के लिए। ठीक है जनाब, इसी तरीके से दर्द के लिए शिफाय दर्द तेल है और बालों के लिए हेयर ऑयल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना? नान से सो सही।
3: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी जी वालेकुम अस्सलाम जी। ये आवाज तो टांग की है, लहजे से समझ आ जाता है कि टांग से किसी ने हमें याद किया हुआ है। नाम बताएंगे अपना जनाब? पश्तो मास्टर नपो है गम नहरा।
3: हेलो।
1: जी जी हेलो। अच्छा कभी कभी थोड़ा थोड़ा पश्तो बोलेंगे। अब आप सराकी में बात करेंगे या उर्दू में? अच्छा ना तो दसो बात अपना साको ना सराकी दे विच या हिंदको दे विच।
3: मेरा नाम है सलीम कटी खेल।
1: सलीम कटी खेल।
3: जी जी जी जरा टांग गरा बुढ़ा से ताल्लुक रखता हूँ।
1: गरा
3: गरा बुढ़ा।
1: गरा बुढ़ा क्या है? गरा हयात का नाम तो हमने सुना हुआ है, गरा बलोच का भी नाम सुना हुआ है, गरा बुढ़ा भी। क्या हुआ यहाँ पर बूढ़े ज्यादा रहते हैं लोग? क्यों बुढ़ा?
3: ज्यादातर है गरायात के साथ है, बिल्कुल बलोच के साथ नजदीक पड़ा है।
1: अच्छा अच्छा चलो ठीक। तो मेरे प्रोग्राम की तो सही समझ आ जाती है, आपको मसला तो नहीं होता?
3: नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। पश्तो को भी बोला करो।
1: तो कैसे बोलूं जब मुझे आएगी नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा, मुझे बताओ ना
3: यार। ऐसा ना करो क्योंकि आप टांग लोगों के साथ आपका सर हुआ है, इसलिए पश्तो बोला करो।
1: पश्तो सीखनी पड़ेगी अब है जी। सेल अगर करनी है तो टांक वालों के लिए पश्तो सीखनी पड़ेगी।
3: सीखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी क्योंकि आप जो आप हाजमा सिर्फ नहीं है।
1: हाँ हाँ
3: हाँ, उसके लिए पोस्ट बोलना पड़ेगा क्योंकि वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक होंगे।
1: अच्छा नहीं बिल्कुल, हाजमा कंट्रोल सिरप हमारा बहुत ही जबरदस्त सिरप है, मेरे अपने इस्तेमाल में है, मेरे घर के अंदर सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने अभी तक कोई पैसे नहीं लगाए हमारी कंपनी के ऊपर?
3: कोई नहीं, अभी मैंने अब्दुल हादी से आपका नंबर लिया और आपको फोन किया।
1: अच्छा,
3: सुनना तो डेढ़ महीना हुआ है सुन रहे हैं।
1: अच्छा, एक डेढ़ महीना हो के सुन रहे हैं। तो जब खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे केसन की, आपको क्या लगता है कि आपको केसन की ये चीज खरीदनी चाहिए?
3: पहले पहले मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि ऐसा है, मगर वो नजमान भाई कहा कि ऐसा नहीं है, वो कैसन है, कैसन बिलाल ने कहा मुझे।
1: ऐसा कैसा ना कैसा
3: कैसा ना, मैंने कहा कि ऐसा नहीं कह के नहीं नहीं कि कैसा ना, मैं उसके साथ बैठा हूँ का ना मुझे रेलवे स्टेशन में।
1: अच्छा अच्छा, उसके साथ बैठे हुए, ठीक है। चल मैंने आपसे पूछा था क्या खरीदेंगे, क्या लग रहा है कि आपको केसन की किस चीज की जरूरत है?
3: यार हाजमा सिरप की जरूरत है,
1: हाजमा सिरप। तो भाई यहाँ से जैसे उतरे ना आप यहाँ से एफएम से, तो सीधा जरबत खान के पास जाएं, वहां से केसन का हाजमा कंट्रोल खरीदें और आज एक दो ढक्कन पी के तो देख लें, फिर हमें बताइएगा कैसी चीज बनाई है केसन ने।
3: जरबत खान के पास बहुत पहचान है, उधर जाएंगे जरूर ले।
1: हाँ जरूर जाके खरीद लें। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया सलीम का।
3: सारे घर के लिए लाएंगे, सारे घर के लिए, एक एक एक के लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं लाता, सारे घर के लिए लाऊंगा।
1: जरूरत हो तो ना, अब सबको जो मैदा खराब ना हो, सबके मैदे खराब है
3: यार, हमारा इलाके का पानी नहीं है, बहुत खराब है वो, बिल्कुल मैदा बहुत खराब
1: हो। फिर तो बस तो मुझे सीखनी चाहिए भाई आप लोगों के लिए।
3: सिर्फ जो है वो लेंगे और जरूर लेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत खराब है, उसको उबालना पड़ेगा और फिर पीना पड़ेगा।
1: हाँ नहीं, इसको आप पानी तो उबाल के पिए, लेकिन इसको आपने ऐसे पीना है, इंशाल्लाह ठंडक भी लगेगी आपको और मैदे के मसले भी हल होंगे। ठीक हो गया सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
3: इंशाल्लाह वो जरूर लेंगे, गुलबराम को सारे सुनने वालों को मुलाजिम दुकानदार है सलाम स्पेशल।
1: ओके सबको सलाम हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और भाई कह रहे थे भाई जी जनाब, ये कहते हैं कि भाई बस तो सीख लें, अगर हाजमा कंट्रोल सिरप को आपने टांग में बेचना है
4: जाओ अब वो।
1: यार एक एक लफ्ज कोई सिखा दो पश्तो पठवान टांग वालों, भाई क्या करोगे इतनी सारी पश्तो का है, कबर में लेके तो नहीं जानी ना पश्तो, कोई थोड़ी सी हमें भी सिखा दो।
4: पेट में हल्कापन।
1: एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी जनाब, और जी जनाब और कॉलर एक है हमारे
5: बस मीठा इम्तिहान।
1: ये भाई कह रहे हैं जनाब,

0: है जब हमें उस नंबर पर कॉल्स आती हैं जो हमारा इसके ऊपर नंबर लगा होता है। ठीक है जनाब, और ये मैं क्या करूं क्या करूं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, कॉल्स पे कॉल किए जाते हैं, कॉल पे कॉल किए जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि इनका शो लाइव चल रहा होता है और फिर वहां से हमारे लिए इश्यू बन जाता है। एनी हाउ जनाब, आप लोगों के मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी जनाब, नेट का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से
1: चेहरे की पसंद
0: आपके पास जो है
1: रंगत निखरे जैसे
0: एक दफा फिर से मेरे ख्याल में मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही होगी। मोहम्मद हमजा केमटा फेसबुक लाइव के ऊपर मौजूद है। आपकी कौन सी प्रोडक्ट पिपला में आ गया? अच्छा, मैं हमजा केमटा से उस दिन बात कर रहा था। आप वहां पर है जहीर फार्मेसी, ठीक है, मूसा वाली पिपला में पता करेंगे तो वहां पर है जहीर फार्मेसी। और जहीर फार्मेसी पर जो है हमारा ऑयल और शैम्पू ये दोनों पहुंचे हुए हैं, ऑयल और शैम्पू। ठीक है जनाब, आप वहां से पता करें तो आपको मिल जाएगी। उम्मे हरम हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम सर, क्या हाल हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, शो बेस्ट है। ठीक है जनाब, शो बेस्ट है, आवाज स्वीट है। और दुरे अदन सिस्टर को सलाम कह रही हैं। ठीक है जनाब, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। जी जनाब, उस दिन बता रही थी इनकी तबीयत और देख लें। खलील भाई ने मुझे आपका नंबर नहीं दिया लास्ट में, सब कुछ
1: केसन हेयर ऑयल एंड केसन शैम्पू ये जोड़ी है बकमल। ये
0: जी जनाब, बाकमाल जोड़ी केसन की, और ये जिसका जिक्र लोग कर रहे होते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली अगर आपको बालों के मसाइल का सामना है तो भाई केसन हेयर केयर जोड़ी जरूर खरीदिएगा। बहुत अरसे से आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, घने नहीं हो रहे, चमकदार नहीं हो रहे, खूबसूरत नहीं हो रहे, तो खूबसूरत बालों के लिए केसन ने बनाया है आप लोगों के लिए केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपना ख्वाब जो है, जो बालों को खूबसूरत बनाने का ख्वाब है, उसे आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है जनाब, मैसेजेस आप लोगों की शामिल कर रहे हैं, साथ साथ में आमिर अवान पाकिस्तानी जो है ये भी हमारे साथ मौजूद है। सलाम खलील भाई, अल्लाह को जान देनी है, केसन खजाना है। ठीक है जनाब, केसन खजाना है। मैं चुक्का वदा हूँ, लेकिन आप केसन के इस्तेमाल शुरू कर दे, कहते मैं तो चुक्का वदा हूँ, हमारे को यही बोलते हैं जनाब। जब केसन को आप पहली दफा इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगता है कि भाई मैं तो बिल्कुल भी चुका हुआ था। अच्छा, लिसनर से कहूंगा तुसा ना चुको, है जनाब, लिसनर से कहूंगा तुसा ना चुको, केसन क्या के खजाने से फायदा उठाओ। ठीक है जनाब, और फायदा उठाएं। लास्ट में सलाम टू आल, सलाम टू आल, अल्लाह आपको हिदायत दे। जो भी कॉल कर रहे हैं हमारा सारा जवाब कर रहे हैं हमारे पासवर्ड नंबर के ऊपर, और डिहिट बन की भी कोई हद होती है यार। क्लास में सबको सलाम, मैंने आपकी अच्छी खालिस क्लास लगानी है, शो मेरा खत्म हो जाए, मैंने आपको दादी नानी याद ना दिलाई ना फिर कहना मुझे। सलाम टू आल, गर्मी से अपने कहते हैं कि गर्मी में अपने पैसों से बोतल पी लेना। ठीक है जी,
2: रोजाना 4 से 5 बराहे रास्त स्टे विद अस।
0: अच्छा, ये मुझे जो कंफ्यूज डिस्टर्बेंस हो रही है ये एक बंदे की वजह से जिसने बार जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, अदनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और कहां से मौजूद हैं? अवान अड्डे से।
1: हर लम्हा है सजा।
0: ठीक है जनाब, उसके बाद कौन है? सलाम डियर खलील, सलाम डियर खलील भाई, तमाम लिसनर्स को बहुत बहुत सलाम। राजा गफूर को सलाम कह रहे हैं,
3: जिंदगी हर खुशी हो
0: अता। सलाम, और कहते हैं गर्मी बहुत शिद्दत से है, तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है कि बारिश के लिए दुआ करें। और गर्मी में आपको मौसम की सूरत हाल बताइए इंशाल्लाह जो अगले 2-3 दिन के बाद जो है। कहते हैं कि आपका शैम्पू जो है वो बहुत जबरदस्त है, हम यूज कर रहे हैं। और आपका लवर क्या नाम है इनका जनाब? नजर हसन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जनाब। इसके अलावा और कौन कौन कौन मौजूद है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है।

से भी हासिल कर सकते हैं केसन की प्रोडक्ट। ठीक है जनाब, ये स्पेशली जब आप ऑयल और शैम्पू की बात करते हैं, अगर बहुत अरसे से आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपके बालों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो स्विच करके देखिएगा केसन के ऑयल और केसन के शैम्पू की तरफ, इंशाल्लाह आपको ढेर सारा फायदा होगा। केसन ऑयल और शैम्पू को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को सोते वक्त आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है, भरपूर तरीके से आप अपने बालों के ऊपर ऑयल को लगाना है और फिर आपने शैम्पू कर लेना है। ठीक है जनाब, हफ्ते में 3 से 4 मरतबा यानी कि एक दिन छोड़कर आप इसको लगाएं तो आपके गिरते हुए बाल रुक जाएंगे। अगर आपको गंजपन आ चुका है तो आपके जो गंजी जगह है, गंजपन है, वहां पर नए बाल आना एकदम से शुरू हो जाएंगे। पहले महीने के अंदर ही आपको नए बाल आते हुए इंशाल्लाह जो है नजर आएंगे आपको अपने सर के ऊपर। दो तरह का है, ठीक है, एक छोटी बोतल है 430 रुपए की और बड़ी बोतल है 750 रुपए की। अब बड़ी बोतल अगर बचत है आप लोगों के लिए, ठीक है जनाब, यानी कि 400 की अगर दो बोतलें करते हैं तो 860 की बनती हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने आपको 750 की दो बोतलें दे रहे हैं। बड़ी बोतल 200 ml की जो है वो दो बोतलों जितनी होती है ना, ठीक है जनाब। तो जो रेगुलर यूजर है, मैं ये कहता हूँ कि मेरी वो बहनें के जो इसी ऑयल खरीदती हैं कि उनके बाल लंबे नहीं हो रहे, घने नहीं हो रहे, तो वो बड़ी बोतल खरीदें, ठीक है ना। बड़ी बोतल खरीदने का ये मतलब होगा कि आपको 150 रुपए की बचत हो जाती है जब आप बड़ी बोतल खरीदते हैं। छोटी 430 रुपए की है, बड़ी जो है वो है 750 रुपए की, ठीक है जनाब। तो बड़ी बोतल खरीदेंगे फायदा होगा आपको। शैम्पू हमारा एक ही साइज का है 200 ml के अंदर, लेकिन चूंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हमारी प्रोडक्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके ऊपर हम ये करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को इसका फैम, क्योंकि बहुत सारे लोग अब चार चार इकट्ठे शैम्पू लेके जाते हैं, तीन तीन इकट्ठे लेके जाते हैं कि हमारी फैमिली बड़ी है और एक शैम्पू जो है हम पर पूरा नहीं होता है। तो जाहिर बात है ऐसे लोगों के लिए जो है हम फैमिली पैक बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, जो कि जो है 650 ml या 700 ml का होगा या 1 kg का होगा, 1 लीटर का होगा, जो कि बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा और आप फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, क्योंकि फैमिली में लोग ज्यादा हों तो फिर जाहिर बात है कि एक शैम्पू काफी नहीं होता है। इसके अलावा ऑयल हमारा जो है वो दो तरह की स्ट्रेंथ में है, 100 ml में भी आता है और 200 ml में भी आता है। डेर इस्माइल खान में शॉप जो कि हमारी अपनी मेन आउटलेट है, वहां पर आप आ सकते हैं। बाजार से आपको निस्बतन चीजें वहां पर सस्ती मिलती हैं, ठीक है जनाब। आपको 40, 50, 30, 70 मार्केट से चीज सस्ती मिलती है। और हमारा एड्रेस है मियाँ कमर्शियल मार्केट के बैक में है, अकबर प्लाजा, मल्ला गोसाइयां वाला हो जाता है, ठीक है जनाब। अब वहां से आप हमारी किसन की प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। पहाड़पुर में हर जगह आपको हमारी प्रोडक्ट मिलेंगे, हैदर मेडिकल स्टोर रंगपुर अड्डा के ऊपर है, जमील नियाजी है, हसीब जनरल स्टोर है, आप इन तमाम जगहों के ऊपर हमारी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी 4 से 5, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।

0: रंगत निखर
1: It's 5 o'clock.
2: Hourly
1: time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास। हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को

0: शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं 0313 91 27 273।
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 मेगाहर्ट्ज़।

जी मिनावालो बिल्कुल तासो माता काल कवला सो पजीरो 963-511-488 बाने बिल्कुल तासो काल नो बहुम जदे प्रोग्राम बारखा गर्जम खो प्रोग्राम पस्टार्ट छे बा यवे गाने तरफ तो जू जावेद आमिर खेल पावाज बांदे बाईवा गाना और बिल्कुल आ बेच कला वापस दे गाने न राजू नो बिल्कुल तासो छे कम काल नई आप अज खाम खा दे प्रोग्राम बारखा गर्जम बिल्कुल तासो बचेरे न जो मासरा बोसो फिलहाल बजू दे जावेद आमिर खेल पावाज बने बदा गाना और उची गाने न बाद चरंग वापस राजू नो बिल्कुल तासो कालू न चिदी आप अज दे प्रोग्राम बारखा गर्जम नो बिल्कुल चेरे बने जो मासरा बोसो राजू दा गाना बने दा गाना वो जावेद आमिर खेल पावाज।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
2: कॉस्मेटिक्स मेडिकल जनरल स्टोर के मिलावेगी दी सरसरता से ऑनलाइन होम डिलीवरी कवले शे दी सरसरता से ऑनलाइन डिलीवरी होम कवले शे द डिलीवरी दोबारा www.permanent.com.pk वाली तासो ऑनलाइन ऑर्डर कवले शे। थैंक यू।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM.

ब्लॉक ऐसे अच्छा चाहिए मतलब ये नोटेंशन सनम ब्लॉक ऐसे मतलब वही खासे खिदासी दासी दासी स्पुग में वंदे शिकारे शा अच्छा कम देख के लेके दस वाले समय स्पुग गेम भी आशिकारे सी जब दस इस कम देख के नहीं लेते शे ऐशु लाइव दुजी रेडा हाँ जमान या वाई ची शो लाइफ दिस इन अमेरिकन लाइफ था हसी डेर ज्यादा तो मने ना सी आ तो दिन लवासी खोर यहाँ जमा खोर तो ग्राम ओवरी डेर मने ना सी अब्दुल खादी सासो द तालियो पचरचको के अब्दुल खादी डेर मने ना सी निमतोला राइस है बा डेर मने ना सी जमुंगा पर ग्राम ओवरी डेर मने ना सी निमतोला राइस है बहुत सी दिन लवासी जमुंगा पर ग्राम ओवरी सी जनाब जनाब जनाब जनाब जिसे द्रहमान बिठनी देन मनसी देन लवासी रिदा रिदा जमा जमा जमा खोरी डेरा डेरा डेरा डेरा मननसी प्रोग्राम लाइफ ऑन एयर दिखा देन लवा मलाइका खान दिमिश प्रोग्राम और जी डेरा मननसी देन लवा शुभ शुभ बरकी से ब डेरा

शकी वाले वा और रेखा मुते रुकी जजत नो टेंशन कासिमेड एक्स पाकिस्तानी सिमलो वे वाड़े सही खैस खुशला तरला सके जी नो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए नो टेंशन कासिमेड एक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट्स नो टेंशन शैम्पू नो टेंशन हेयर ऑयल नो टेंशन एक्ने ड्रॉप्स नो टेंशन ब्यूटी फेस वॉश ब्यूटी क्रीम फॉर्मूले क्रीम गोल्ड क्रीम तरला सके जी।

या पुराने दस्तूर, पुराने रवायतां, पुराने कपड़े, लिबास केरे रंग दे होनियां, शादियां केरे रंग दे होनियां। दोस्तों इन्हों ते रोशनी सटे सूँ, तुसा मेरे नाल रासो, तुसा भी शायद उते मेरे नाल रासो कि पुराने यादां ते पुराना लिबास ते पुराने गालियां किवें होंदे। दोस्तों आखदे हन कि पुराने शादियां, पुराने वेले दे जेरे शादियां थींदियां ते जबरदस्त